ये जवान हो तो नो ये लाइफ फोटो ऐसी एंड दिस वन इज डन बाय के एंड जयेश गांधी द सॉन्ग इज तेरी याद लेट्स एंजॉय ऑन लेमन रेडियो